0: Radio Amma Network, News and Information Station.
1: Radio Amma Network.
2: Pegham Aman hai.
3: Pyar ki ek duniya lekar.
1: Mohabbat se samet kar.
2: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: जरमान होम्योपैथिक सेंटर, जेल मोड़, बटग्राम, पकम के चिबस्तासो दहर ना इलाज मरज, इलाज डेर पतसल्ली सरा कवलेशी, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, खूनी औबादी बवासिर, अरकुल निसा, बे औलादी, दनारीना उजना

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर योशमार कलूना तालीम पर मैदान की खुल खिदमत तरसर कवी नकाम बची फुल बची गणी दौरे हाजिर तालीम और कवल सरा सरा और माशुमानों की

0: सबस के हलिसबे।
1: ये है कमर चाय का पाकिस्तान।
2: दा चल कप समदे और कप गर दे वो हलिये कमर दे। कमर चाय द पाकिस्तान नंबर वन चाय। रंग बे मिसाला खंड ला जवाबा। कमर चाय द पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमच द पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान पहर कोर और पहर होटल के इस्तेमालीगी।
3: नेमनी दोस्तों जलवर तमा हम द कमर चाय वही लीदी हो पलाला बई मनी सो दे लाची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर बेखंद चेहरा पा महकड़ी हुई।
0: दाजल ब कमर चेहरा ओडम खुदा बरा त चरता मिलाउशी।
2: दा बताता पो बटाग्राम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतर प्लेन ताकोट कर्ग और बना बाजारों ने लावा द बटाग्राम और अलाई पहर गट और उड़ू की जनरल स्टोर के मिलावीगी। पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर नजदी द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई। द कमर चाय पाड़ा नूर मालूमात पदी नंबर तरला सकवले शई 0320-9000-920 बल नंबर दे 0314-92-490-83।
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
1: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।
5: ग्रानो रिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।